0: ताचागाय किशा सकिरबे
1: उज शुगे गेमाल तुटेना चेंजी रंगला जगा थुमरी

0: 胜利一遍。
1: 那胜利一
0: 社长啊，
1: 胜利
0: 啊，胜利，胜利，胜利，社长，阿爸死了。ये भी चचा ना कहता हमने सा चचा चचा
2: शेख जी चचा का वो नहीं है लेकिन क्या खा तो वही किंतु जी नियम से शिया चल रही है वह लिंग जैन कांग्यो आज मिके बांदुलो तो वेरुआई
3: दायोगे